0: 97.6
1: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6
2: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
3: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।

मौसम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझ तो कितना ब्यूटीफुल है, इसलिए मेरा मौसम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्यूटीफुल है। अरे शादियों का सीजन ना एक रेल भूल है, कैसे हम भी कह देंगे हाँ जी हाँ को भूल है।

0: सुल्टिनी, आई लभ यु।
1: बहिनी जस्तो मान्छेलाई
2: सुल्टिनी, साँच्ची हो के झुटो पनि मरिजाऊ।